नानक साहब कृपालू का चरना अमृत बाणी के मुताबिक जिन्हें सिख्या लैनी सी जिन्हें दिख्या लैनी होंदी सी वह सतगुरु के चरणों में आते सन। सारे विद्वान ये मानते ने ते भाई साहब की रचना विचों मैं दो तीन प्रमाण जरूर सांझे करने ने इस गल के शंके लई कि उदो सिख अमृत छकते सन उदो चरण पौल चरण ओदक भाई कान सिंह नाभा होर ने शब्द पग पौल भी वरते हैं चरण धोर रहे रास कर कहने गुरु साहब के चरण धो के सिख नमस्कार करते सन चरना अमृत सिखा पिलाया तन गुरु नानक साहब के चरना अमृत सिखा पिलाया जाता सी। एक बचन भाई साहब ने होर किया है कह लगे गुरमुख सुख फल पिरम रस चरण अमृत लै सिख पिलावे कि जिन्हें अम्यो रस तक जाना सी ओनू गुरु का चरना अमृत लेना पैंदा सी। भाई साहब ने तीजा प्रमाण दिता है कह लगे प्यारे के चरण ओदक लै उच मन खौमे दुबदा रोग गवाए कि जिन्हां दे अंदर दे खौमे दे दुबदा दे रोग दूर होए उन्होंने गुरु को चरना अमृत की दात ली ते जिन्हां चरना अमृत लिया उन्हां सिखां दा जीवन कैसा सी। मैं अगे चल के बेनती करना बेनती कर रहा सा गुरु तो बिना अंदर दा ज्ञान नहीं सतगुरु तो बिना अंदर दे भरम दे कवाड़ नहीं कोई कर सकदा। पता ने तो बड़े स्पष्ट शब्द कहे कहिंदे दुनिया के लोग चाहे सुरत का ज्ञान होवे चाहे अंदर का कोई रस होवे गुरु तो बिना वह ज्ञान नहीं मिल सकता। शब्द वरते सन कि गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे गुरबिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे एदा अर्थ की है गुरु कर रे मन मेरे कहिंदे ने मेरे मना जे अंदर दी सुरत दी खेड लैनी चाहना है ते गुरु कर गुरु नू अपनी जिंदगी विच धारण कर लै गुरु दे चरणां नाल जुड़ जा ते जे बाहर दे कर्मां नाल अंदर दा ज्ञान हुंदा होवे ते नाले बाबे नानक दे घर दी तां रीत ही है गुरमुखो कि इत्थे जदों भी कोई गुर सिखाए कोई जगियासू आवे ते वैसे जगियासू दा अर्थ भी ए वे आम तौर ते असीं शब्द वरतने आ जगियासू जगियासा हुण जगियासू हर कोई बंदा आउण वाला जगियासू नहीं हुंदा ये दो शब्दां दा सुमेल है जग आस जेड़ा बंदा ए आस लैके आउंदा है कि गुरु कोल जाके मैं करोड़ां जन्मां दे सुत्ते ने जागना है जेड़ा जागण दी आस लैके आवे असल विच ओ ही जगियासू हुंदा है जिहदे अंदर जगियासा है मैं अंदर नूं जगाना है। धन गुरु नानक साहिब कृपालू जी ने चरना अमृत दी दात दित्ती नाल गुरमंत्र उत्थे साहिब भाई जी ने शब्द भी वरते ने भाई गुरदास ने के वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया जा शब्द वरते ने के वाहे गुरु गुर मंत्र है जप खौ मैं खोई धन गुरु नानक साहिब कृपालू आए ने जिन्ना चरना अमृत की दात लई उन्होंने गुरु की सिख्या नू ग्रहण किया जिन्हां ने सिख्या लैके कमाई की फिर उन्हां दा अंतर आत्मा परमात्मा दे चरणां विच लीन होया। साहिब कृपालू जी दे अमृत बचना ते आधारित के हजूर ने चरण पौल दी दात दिती ते गुरु दिखिया शब्द दी दात दे के उस कमाई वल फिर सिख नूं तोरिया। हजूर ने जदों गुरु दी पदवी दी गल करने आ ते सतगुरु आप अमृत नाल भिजे ने ते जिहड़ा गुरु दे चरणां विच आउंदा है उम्र का तकाजा नहीं ये नहीं कि इस उम्र विच कोई गुरु को आवे ते तां उहदा अंदर चल सकदा है। सतगुरु ने ते इन्नी कृपा की है कई बार बेनती करना हुना कि देखो जिस बजुर्ग की उम्र 63 कु साल के करीब लंघ गई होवे बाबा अमरदास की उन्हां नू गुरु शब्द की कमाई करन दी ते गुरु कोल आउण दी लोड़ जरूर पई कि उन्हां दा गुरु तो बिना सरिया क्यों ना। अपनी जिंदगी दे 20 साल जिन्हां ने कर्म धर्म किते होण अपनी जिंदगी दा बहुत हिस्सा जिन्हां ने दान पुन विच बतीत किया होवे ते जिद्दन उन्हां दे अंदर नूं वी जाग लगी ते केवल पूरे गुरु दी चरण शरण विच आउण ते गुरु तो बिना अंदर दी जाग लग नहीं सकदी। अज ओह जे घर आए ने ते इक सज्जन ने सिर्फ इन्ने कहा सी कि बाबा परमात्मा दीआं गल्लां बड़ियां करने पर तेरे गुरु दा नाम की है ते बाबा अमरदास कहिंदे ने अजे यतन पिया करना कि गुरु कितों लभ जाए क्योंकि अजे मैं गुरु धारण नहीं कीता। उस सज्जन ने इन्नी शब्द कहे सन।

सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच ही सच नानक खुशी भी सच

कुजड़ा सैको हाथियों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र ते निघी गोत आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, आप सरवण करदे आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। अज जो भगत फरीद साहब जी दे सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, इन्हां सलोकां विचों पहला सलोक

ठाकुर प्रभु तुम्हारे शिष्य रखो हो कृपातार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, रखो हो लाज मुरार। वाहिगुरु साहिब जीओ, जित दिहाड़े तन बरी, साहे ले लिखाए, मलक जे कन्नी सुनींदा, मोह दिखा ले आए, जिंद निमानी कड़ी है

अपने अंदर दी राखी कर रहा है और जो रब जी दे राह दे उत्ते सही ढंग दे नाल चल रहा है। गुरबाणी ए कहिंदी है उहदा इश्क मुबारक है, उहदा लेखा करते दे पास है, मतलब करता उहनू अंदरों जानदा है ते करता पुरख वाहिगुरु दी ओ रहमत दा पात्र भी बन जाएगा, ओ करता पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश दा पात्र अवच बनेगा। एक वचन मैं भगत फरीद साहब जी लई तुहाडे सामने होर रखना चाहवांगा। कहिंदे ने फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे प्रांद, भगत फरीद साहब जी का वचन। कह लगे फरीदा साहिब दी कर चाकरी, चाकरी मैंने सेवादारी कर, चाकरी मैंने नौकरी कर, चाकरी मैंने गुलामी कर, कहे कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। भगत जी कहन लगे साहिब दी कर चाकरी, अपने साहिब दा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा चाकर बन, ते चाकर बनन दा मतलब है गुलाम बन, गुलाम दा मतलब है जो हुक्म गुरु कहन उस हुक्म नू मनना है। कोई उक्ति कोई युक्ति कोई अपील कोई दलील कोई किंतु कोई विंतु लेकिन वेकिन करन दी लोड़ ना होवे, गुरु ने कह दिता है काम करना है ते करना है, उहदे अगे अपील दलील करन वास्ते मन कोई प्रश्न उठाए ना। आख्या साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे प्रांद, अपने अंदर जेड़ी लगी हुई मैल है ना मैल नू ला, काम क्रोध लोह मोह निंदा चुगली ईर्षा बखीली ठगी ठोरी हेरा फेरी तरह तरह का बुरा सोचना बुरा चितवना बुरा करना, कहन लगे ओ अंदर दी मैल नू ना बाहर कर, दिल दी लाहे प्रांद। अगला बचन कहन लगे दरवेशा नू लोड़िए रुखा दी जी रांद, दरवेश ओ है जिदा जिगरा जिदा रिदा विशाल है। ते किस तरह दा विशाल है, भगत फरीद साहब एग्जाम्पल दे रहे ने रुखा दी जी रांद, जिदा जेरा जिदी बर्दाश्त ताकत एक रुख वर्गी है। रुख नू लोग पत्तिया नू तोड़न ता नहीं, फुलां नू तोड़न ता कोई नहीं, जे कोई फल कच्चा तोड़ लवे ता कोई नहीं, फल पक्का तोड़ लवे ता कोई नहीं। फल तोड़न लग्या कदी कदी बच्चे रुख दी टहनी तोड़ के रख देंदे ता कोई परवाह नहीं, कदी कदी लोहार आरी लेके चला जांदा है उहनू कटना शुरू कर देंदा है ते ता कोई नहीं। मैं मारू राग दे अंदर साहिब श्री गुरु नानक साहब जी दा एक बचन पढ़िया ते पढ़ के हैरान होया कि पातशाह दरवेश इहनू कहिंदे ने, असीं ते गलती दे अंदर खड़े हां। हजूर कहन लगे शस्त्र तीखण, तीखण मैंने तिखे, शस्त्र मैंने हथियार, शस्त्र तीखण काट डारियो मन ना कीनो रोस। रुख दी गल कर रहे ने गुरु नानक साहब ते रुख दी गल कर रहे ने भगत फरीद साहब। भगत फरीद साहब कहिंदे ने दरवेशा नू लोड़िए रुखा दी जी रांद, ते इधर गुरु नानक साहब जी रुख वास्ते कह रहे ने, कहन लगे शस्त्र तीखण काट डारियो मन ना कीनो रोस। तिखे शस्त्रां दे नाल आरी दे नाल कटन वाले ने ना उन्हों टुकड़े टुकड़े किते, उदे फटे बनाए, उन्हों जड़ दिता, उदे तन बदन दे अंदर किल कांटा ठोकिया, उदी एक बेड़ी बनाई, ते आखिया जिन्हें बेड़ी बनाई है जिन्हें कटिया है उस रुख दा दिल वेखो उस कटन वाले नूं नदी तो पार लेके जा रहा है, उन्हों डोबदा राह विच नहीं। दरवेश दी तबीयत दरवेश दा हिरदा दरवेश दा अंदर इस तरह दा होना चाहिए। हजूर कहन लगे शस्त्र तीखण काट डारियो मन ना कीनो रोस, काज उआ को ले सवारियो तिल ना दीनो दोष। उनु तिल जिन्ना दोष नहीं दिता भी तू मेनू कटिया तू मेनू वटिया तू मेरे अंदर किल ठोके तू मेरी बेड़ी बनाई मेरा रूप विगाड़िया ते मैं सजना तेनू दरिया तो पार लेके जाना नहीं तेनू डोबांगा ते डोबांगा दरिया दी लहर दे अंदर उहदा तिल पर दोष नहीं। फिर जदों मैं पढ़दा गुर इतिहास ते गुर इतिहास पढ़दिया पढ़दिया रोंगटे खड़े हो जांदे ने कि दरवेश हुंदा कौन है, दरवेश कहना किनू चाहिदा है। निकलदे ने घरों जगत जलंदे नूं ठारण वास्ते और नाल लेके निकलदे ने अति सत्कार योग भाई साहब भाई मरदाना साहब जी नूं, जगत नूं तारण वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी, ते जगत ने चुक चुक के सलामां भी कीतियां ने, ते जिथे सलाम करन वालियां दी कतार खड़ी सी उथे नाल

0: गुरु नानक साहब जी नूं मंदे बोल बोलन वाले, इट्टां वट्टे मारन वाले, कोचे ते कमले बोल बोलन वाले, उन्हां दी लैन भी बड़ी वड्डी सी, कोई छोटी नहीं सी। सारिया ने गुरु नानक साहब जी नूं सिजदा नहीं कीता, सारे पातशाह दे सामने नहीं चुके, और इकल्ले गुरु नानक साहब नहीं, कबीर साहब नूं सारा बनारस कहिंदा रहा, कबीर बौरा कबीर बौरा कबीर बौरा सारे ही कहिंदे रहे। नामदेव साहब नूं मंदर विचों धक्के, रविदास साहब जी दे नाल वधीके, सरमद सूफी फकीर दे नाल वधीके। खैर मैं किन्नियां इतिहास विचों एग्जाम्पलां तुहाडे सामने लिया के रखा। गुरु नानक पातशाह नूं बगदाद दे अंदर एक जगह ते एक खूह दे अंदर धक्का दे दिता सी, खूह दे अंदर। पर जिन्हों धक्का दिता है वह बिलकुल शांत हृदय दे मालक ने, ते बाहर निकल के भी शांति दा उपदेश कर रहे ने। पर जिन्हां ने धक्का दिता है वह कलपदे हुए रोंदे हुए कुरजदे हुए हजूर दे कदमी पैंदे ने बाद विच अपनी भुल दी खिमा मंग के। गुरबाणी फैसला साडे सामने रख रही है, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, जगत दे भूत ने लाउण वास्ते आए, ते लोकां ने गुरु नानक साहब जी नूं कह दिता है आ भूतना है। को कहे भूतना, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, बेताल जो साज ताल विच ना होवे, हारमोनियम ताल विच ना होवे, बजाउण वाले दा सुनन वाले दा रस नहीं। गुरु के कीर्तनीय निक्की जी हथौड़ी दे नाल जोड़ी नूं ताल विच करदे ने, तुहाडे सामने जोड़ी दे पुड़े नूं कदी चढ़ा देंदे ने, कदी ला देंदे ने, सुर ताल विच करदे ने। जोड़ी ताल विच ना होवे वजाउण ते सुनन वाले दा आनंद नहीं। सरंगी रबाब सरंदा कोई भी साज अगर ताल विच है सुर विच है ते उहदे विचों राग दा जन्म हुंदा है, गाउण वाले वजाउण वाले सुनन वाले दा आनंद बनदा है। ते जे ओ साज सुर ताल विच ही नहीं ते ना वजाउण वाले दा आनंद ते ना श्रोते दा आनंद सुनन वाले दा आनंद। आए सन बेताले जगत नूं ताल करन वास्ते, बेसुरे जगत नूं सुर विच करन लई, ते लोकां ने कहा बेताला, कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, पया दवाना शाह का नानक बौराना। पातशाह दी बाणी दे अंदर आ बचन आउंदे ने। कोई मस्ताना कहिंदा है, कोई दवाना कहिंदा है, कोई बेताला कहिंदा है, कोई पूतना कहिंदा है, कोई दस्तगीर वर्गे इट्टां वट्टे मारन लई आ जांदे ने। पर दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जी रांद, गुरु नानक साहब जी दी मुबारक रसना तों किसे दे विरोध दे अंदर एक कौड़ा फिक्का बोल निकलदा किसे ने नहीं सुनिया। इट्टां वट्टे मारन वाले ओ तुहाडी कुल नास हो जाए, ये बचन पातशाह ने नहीं कहे। जेड़े मेनू मंदा बोल रहे हो लोग तुहानू मंदा बोलन, ये बोल नहीं कहे। जिन्हां ने मंदा बोलिया पातशाह उल्टा उन्हां दा भला कर दे रहे। ते मैं ते इतिहास दे पन्ने पढ़ के एक बारी हैरान होया, भाई साहब भाई मरदाना जी कर देंदे ने प्रश्न, वो कह देंदे ने बाबा असीं इन्हां लोकां दा भला कर रहे हां, अपना घर छड्डिया परिवार छड्डिया तियां पुत्तर छड्डे बच्चे छड्डे, गुरु नानक साहब भी गृहस्थी ते भाई मरदाना साहब भी गृहस्थी, उन्हां दे भी दो साहिबजादे ने भाई रजादा जी ते भाई सजादा जी, गुरु नानक साहब जी दे दो साहिबजादे ने बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास जी। आखिया आपां घर बार छड्डिया मां बाप छड्डे तियां पुत्तर छड्डे आए आ इन्हां दा भला करन लई, ये उल्टा सानू मंदा बोलदे ने, उल्टा सानू गाली गलोच करदे ने। मुस्कराउंदिया होया कहन लगे मरदानिया जदों कोई पागल बंदे दा वैद जां डॉक्टर इलाज करदा है ना ते ओ पागल डॉक्टर नूं वैद नूं मंदा ही बोलदा है, क्योंकि होया जो पागल समझदार ते होया ना, अगर समझदार दा इलाज होवे समझदार ते करेगा धन्नवाद, जेड़ा बंदा है सूझ सियाणप रखण वाला ओ ते कहेगा तुहाडा शुकराना है तुसीं इह चंगा उपदेश मेरी झोली विच पाया है। पर जेड़ा अति मूड अति पागल है ओ मारन वास्ते आएगा इन्हें सच दी गल कीती क्यों है, ओ हथियार चुक के आ जाएगा इहदा गला बंद करो इहदा बोलना बंद करो। गुरु नानक साहब जी नाल इस तरह हुंदा रहा। गुरु नानक साहब कहन लगे मरदानिया जदों कोई वैद पागल दा इलाज करन लई जांदा है ते ओ मंदा ही बोलदा है, उस वैद ते कदी कदी ओ हथी वी पै जांदा है, ते वैद अपना गुण ना छड्डे ओ तां ही चंगा वैद है, ओ तां ही सुगड़ ते सुजान वैद है। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪਾਗਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਦ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਪਾਗਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਵੈਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਦਰਵੇਸ਼ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਮਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਮ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਕੁਝ ਅਖਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਤ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ? ਇਹ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ। ਚੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਤ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਈਰਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਾ ਕੱਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਕੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੁਨੱਖਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ फिर अखीर ते मैं एक बेनती होर भी करदा चला, साढ़े कोल कोई इस तरह की एनक ते है नहीं पे जो अखां दे उत्ते लाईए ते जेड़ा साढ़े सामने खड़ा है वह नजरां तक लैन के सच्चा है जां झूठा है। साड़ी अपनी इतनी तौफीक नहीं, अखां दे अंदर इनी बरीक बीनी नहीं, पर जे अपनी समझ नहीं ते समझ देन वाले गुरु नूं पुछना ते कोई मेड़ा नहीं ना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी चार अखर बाणी दे उस कसवटी नूं उस बंदे दे उत्ते ला के परख लिया करो कि यह सच्चा है जां झूठा है, दा जवाब तुहानूं अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जे गुरबाणी दे अनुसार गुरबाणी दी कसवटी दे नाल ला के परखोगे, क्यों परखण दी लोड़ है, क्योंकि सुनियारा सोने नूं हथ दे अंदर पकड़दे ही वह अंदाजा ते ला लैंदा है कि सोना असली है जां सोना नकली है। पर अपनी उहदे कोल इक हुंदी है परख, इक हुंदा है पत्थर दा निक्का जिहा वट्टा जिहनूं कसवटी कह दिंदे ने। उह आम पत्थरां वर्गा पत्थर नहीं, थोड़ा खास पत्थर हुंदा है, हुंदा पत्थर ही है। सोने नूं उहदे उत्ते कसाउंदे ने, उहदे रंग नूं वेख के उहनां नूं समझ पै जांदी है असली सोना है जां नकली सोना है। प्यारिओ, जे खुद ना समझ पवे असल ते नकल दी पहचान करन वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे उत्ते उहनूं ला के वेख लिया करो, ये बंदा सच्चा है तां समझ पै जाएगी, जवाब आ जाएगा, ते जे झूठा है तां समझ पै जाएगी। एक बेनती मैं होर करदा चला संगत दे सामने, जिन्हां दे कोल कोई कला है, कोई गुण है, कोई रिद्धि है, कोई सिद्धि है, कुछ भी किसी दे पास है, वह सारे सत्कार योग ने, मुबारक ने। पर जिथों ये सारे गुण सानू मिल रहे ने, उहदा नां है निरंकार, उहदा नां है परमात्मा। जिस दी झोली दे अंदर भी जो किसी नूं दात मिली, वह मिली कित्थों? ये निरंकार दे कोलों। हुण जिन्ना पानी झीलां दे अंदर, तालाबां दे अंदर, छपड़ियां दे अंदर, सरोवरां दे अंदर, नदियां दे अंदर, दरियावां दे अंदर आप वेख रहे हो, विद्वानां ने पानी दा मरकज, पानी दा केंद्र सागर नूं मन्निया है। और पानी सागर दा ही है, भावें उह छपड़ां दे अंदर है, तालाबां सरोवरां दे अंदर है, झीलां दे अंदर है, या दरियावां दे अंदर है, पानी दा मरकज सागर है, सागर दा ही पानी सारिआं दे अंदर है। किसी दे कोल कोई ताकत, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, कोई गुण है, ते वो गुण सारे दे सारे परमात्मा कोलों ही आए ने। ते धन श्री गुरु नानक देव पातशाह तो लैके दसे गुरु साहिबाना ने सानू सीधा परमात्मा दे नाल जोड़िया, सीधा परमात्मा दे नाल। मुबारक ने वह छपड़िया जिन्हां दे कोल पानी है, पर साडा छपड़िया दे नाल संबंध नहीं, सागर दे नाल संबंध है। मुबारक ने वह नदियां, मुबारक ने वह दरिया जिन्हां दे कोल पानी है, उस सत्कार योग ने, चलो उन्हां दा पानी फसलां नूं हरियां भरियां करदा है, लोकां दी प्यास बुझांदा है, मुबारक ने। पर जिथों उस दरिया नूं पानी मिल रहा है, उहदा शुक्रिया अदा करना कदी ना भुलो, और उहनूं ही अपना मुरशद मनो, उहदे नाल ही जुड़ो। तुहाडी शरदा नूं कदी चकना चूर होना ही नहीं पएगा, तुहाडी शरदा कदी टुटेगी नहीं। अधूरियां दे नाल जुड़ के शरदा टुट जांदी है, पूरियां दे नाल जुड़ के कदी शरदा टुटदी नहीं है। ते साडे वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नालों वड्डा कोई नहीं, इन्हां नालों पूरा भी कोई नहीं। भगत फरीद साहब जी दे ए मां वाक जिन्हां नूं आधार बना के मैं कुछ बेनतियां आप संगत दे सनमुख रखण दा निमाणा यतन कर रहा सां।
1: हस्त अलंबन देहु प्रभ, करतो उदर गोपाल, मोह निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल, जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो हो किरपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राखो हो लाज मुरार। वाहे गुरु साहिब जीओ। किजना बूझे किजना सूझे।

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निकी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों मन बिरतियां एकागर करके बहन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप सरवण करदे आ रहे हो रोज सवेर दे वकत भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा। अज जो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरे, कि जे मैं जानदा हुंदा कि तिल थोड़े ने ते जल्दी जल्दी बुक भर भर के दूसरे पासे रखन दे नाल सुटन दे नाल इन्होंने जल्दी खत्म हो जाना है, ते मैं बड़ा सोच विचार के संभल संभल के कदम पुटदा बुक भरदा ताकि मेरे भांडे विचों तिल मुक दे ना। हकीकत यह है फरीद जी जिधर इशारा कर रहे ने कि मनुख नू जदों अपने सवासां दी कीमत समझ विच आउंदी है कि मेरे सवास अमोलक ने, ते जिहड़े सवास इह अज तों पहलां लै चुका है जिन्ने सवास गुजार चुका है उन्हां पिछलियां बीतियां होयां सवासां दे अंदर इह वेखदा है कि मैं कमाया की ते गवाया की, ते नजर इह आउंदा है कि गवाया सब कुछ है ते कमाया कुछ भी नहीं। समझ ये आउंदी है कि सवास गवाई गवाए ने, इन्हां सवासां दे नाल मैं कोई चंगा वणज व्यापार कीता हुंदा, रब जी दे गुणां दा संग्रह कीता हुंदा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता हुंदा, ये कुछ ते नजर आ नहीं रहा, ते सवास सारे गवाए हुए गुम हुए राख दे ढेर दे अंदर पाए हुए नजर पै रहे। पिछले बीते समय दे उत्ते तौबा कर रहे ने, उपदेश ते सानू ही दे रहे ना भगत फरीद साहब, आप ते उस महासागर परमात्मा दे अंदर मिलके अपेद हो ही चुके ने, साडे लई उपदेश है पिछले बीते हुए समय दे अंदर जो गुनाह हुए जो सवास संभाल ना पाया उन्हां वास्ते पश्चाताप।

समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवै वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा जेतों अकल लतीफ़

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निकी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनों, आप रोज सवेर दे वकत सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों, उन्हां दे सलोकां विचों कथा विचार सरवण करदे आ रहे हो। अज तुहाडे सामने तीन श्लोक भगत फरीद साहब जी दे पढ़ के सुनाए गए। पहला श्लोक, देख फरीदा जो थिया दाढ़ी होई पूर। कह लगे कि अपने जीवन दे अंदर ध्यान दे के वेख की होया नजर आ रहा है, जो थिया जो हो चुका है, जो बन चुकी है खेड, वो ए नजर आ रहा है कि दाढ़ी होई पूर। तेरे दाढ़ी दे वाल रंग अपना बदल के सफेद हो गए ने, काली हूं हुण तौले आए, पवर गए बग बैठे आए, काले रंग जवानी दी निशानी वो चले गए, चिट्टा रंग बुढ़ापे दी निशानी वो आण के तेरे उत्ते बह गए। और नाल ही अगली पंक्ति विच कह रहे ने, अगों हुण नेड़ा आया। अगे नेड़ा केड़ा पासा आ रहा है, अगे मौत ते पिछा रहा दूर पिछे जन्म। मौत नेड़े नेड़े आउंदी नजर आ रही है, ते जन्म दा दिन पिछे दूर रह चुका नजर आ रहा है। साडे जीवन दी सारी खेड जन्म ते मरण दे विचकार चल रही है। साडी शुरुआत जन्म तो होई, साडा अंत मौत ते जाके हुंदा उत्ते हुंदा है। जन्म दे नाल असीं कुछ नहीं सी, मौत तो बाद कुछ बन सकन दी समर्था साडे विच नहीं है। जन्म ते मौत दा ए विचकारला समा, विचकारले समय दे अंदर ही असीं अमीर हां, गरीब हां,

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग, मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र कोत आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, पाप लड़ी वार कथा सरवण करदे आ रहे हो भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। भगत फरीद साहब जी दे जो श्लोक अज आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, उन्हां श्लोकां विचों पहला श्लोक फरीदा कुकेंदियां चा गेंदियां मती देंदियां नेता, जो शैतान वंजाया से कित फेरह चेता। भगत जी कहन लगे जिस दे चित दे अंदर दिन पर रात लगातार शैतान ही वसदा है, बुराई वसदी है, उनु मत्ता देन वाले लख मिलन पर वो किसे दी मत लेंदा कदों है। उनु कूक कूक के पुकार पुकार के कोई लख वारी एक गल कह कि इस रस्ते दे उते ना चल, ए बुरा रस्ता है, इस रस्ते दे उते चलदा चलदा ठगया जाएगा, पर वो किसे दी आवाज नु सुनदा ही नहीं है, वो किसे दी गल नु मनदा ही नहीं है, तरजीह देंदा ही नहीं है। शैतानियत दा इतना वड्डा जोर मन दे अंदर, शैतानियत दी इतनी वड्डी लहर मन दे अंदर चल दी कि ओ ना मां ना पिता ना किसे उपदेशक ते ना गुरु दे बोल नू सुन के मनन वास्ते तैयार है। कूक ते रहे ने ना गुरु तेग बहादुर पातशाह, पुकार पुकार के कह रहे ने कि जाग रे मन जागण हारे, गुरबाणी कह रही है ना जाग रे मन जागण हारे, पर जागण दा नां लेंदा कदों है। कूक कूक के कह रहे ने सतगुरु के जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफल सोया, जो तन उपजे संग ही सो पी संग ना होवा। पर की असी इस गल नू सतगुरु दी आवाज नू सुन के मन लिया, साडा मन इस पासे नू मुड़ तुरिया। सतगुरु पुकार पुकार के कह रहे ने सुख नाही बहुता तन खाटे, सुख नाही पेख निरत नाटे, सुख नाही बहुत देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। पुकार पुकार के कह रहे ने के सर्ब सुखा हर हर गुण गाए, तो की साडे मन ने सतगुरु दी इस आवाज नू सुन लिया। पुकार पुकार के हजूर कह रहे ने नर अचेत पाप ते डर रे, ते गुरु कह रहे ने नर अचेत ए बेहोशी दे अंदर चलन वाले मनुख पाप ते डर रे, पाप करन लगा संकोच कर, पै खा ना कर, तो की साडे मन ने ए आवाज सुन।

साधन बनाया दिसदा है, देन वाला नहीं दिस रहा, ओदा ना ही अदृश्य, ओदा ना ही निरंकार जिदा कोई एक आकार नहीं है। देंदा परमात्मा है, एक गल वखरी है कि ओह विचकार बहाना कोई भी खड़ा कर लवे, बहाना कोई भी बना लवे। जो बहाना है ओह दिसदा है, जो दातार है ओह इन्हां अखां दे नाल दिसिया ने, बहाना नजर आया ते बंदा बहाने तो प्रभावित होया, बंदे तो प्रभावित होया, बंदे दी गल करदा है, बंदे तो प्रभावित है, बंदे दा धन्नवाद करदा है, बंदे दी गल करदा है, ते फिर बंदा भी इस तरह ही गल करदा है। अगर तेरी बां मैं ना फड़दा ते पता नहीं तेरा हाल की होंदा। तू जिस वक्त कनेडा दे अंदर आया सी, जेब खाली लेके आया सी, अगर आए हुए दी संभाल मैं ना करदा, तेरी बां मैं ना फड़दा, कम ते मैं ना लवांदा, ते खबरे तेरा हशर की होंदा। बंदा भी अपनी गल करदा है क्योंकि बहाना बनया है, जिन्हें बहाना बनाया है ओदी गल करदा ही नहीं है। बहाना बनाउन वाला परमात्मा है, देन वाला परमात्मा है। दे किसे भी जरिए देवे, तेरे जरिए देवे, मेरे जरिए देवे, किसे दूसरे दे जरिए देवे। इथे एक मैं छोटी जी उदाहरण तुहाडे सामने रखदा चलां। पानी बंदे ने नहीं बनाया, पानी बनाया है परमात्मा ने। असीं जानदे हां जमीन दे हेठां पानी है, हुण जमीन दे हेठां बोर करके जिस मोटर पंप दे नाल यंत्र दे नाल पानी जमीन दे थल्लों कढ़िया गया, उस मोटर दी उस पंप दी साडी जुबान दे उत्ते महिमा वार वार आउंदी है। ये पंप बड़ा चंगा है, पिछले 20 साल तो लगातार चल रहा है, कदी खराब ही नहीं होया। मोटर बड़ी चंगी है, पिछले 30 साल तो चल रही है, कदी खराब नहीं हुई। मोटर दा नाम, बनाउन वाली कंपनी दा नाम ओ जुबान दे उत्ते आउंदा है ते वार वार आउंदा है, असी ओदा धन्नवाद करदे हां। पर पंप जां मोटर की करदे अगर परमात्मा थल्ले पानी बनाउंदा ही ना। पंप पानी बना के नहीं सानू दे रहा, बने बनाए पानी नू इकट्ठा करके बस साडे तक पहुंचाउन दा एक जरिया है। पानी बना नहीं रहा, बनाउन वाला कोई होर है, ये पानी पहुंचाउन दा एक जरिया है, पानी पहुंचाउन दा एक साधन है। तो हुण जो साधन है, साधन दा नाम साडी जुबान दे उत्ते आउंदा है ते आउंदा वी वार वार आउंदा है। ये साधन बड़ा चंगा है, मोटर बड़ी चंगी है, पंप बड़ा चंगा है, इहदे कारीगर बनाउण वाले बड़े ईमानदार ने। पर कमाल दी गल है, जिन्हें पानी बनाया है कदी उहदा भी ते धन्नवाद करो, कदी उहनूं भी ते दो बोल प्यार दे बोलो कि निरंकार तेरा भी धन्नवाद है, तू पानी बनाउंदा ही ना तो ये मोटर पंप ये कर दे भी के। दूसरी उदाहरण मैं एक होर अर्ज करदा चला। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚਾਰ ਸ਼ਫੇਰੇ ਪੱਖੇ ਕੂਲਰ ਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖਾ ਇਹ ਏਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਲਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਖਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ, ਇਹ ਕੂਲਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਏਸੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੈ।
एक बेनती मैं हो रही

अगर है तो फिर वो किधरे स्पेस के अंदर उत्ते सचखंड बना के रहिंदा होगा, साडे अंदर नहीं है। फिर वो किसी होर देश का वासी होगा, साडे अंदर तो कम से कम नहीं है। परमात्मा अंदर है। यही कारण है भगत फरीद साहब जी ने ऐलानिया एक गल कही है। वो कह लगे तू रब नू मिलन दे सारे यतन प्रयतन छड़ दे, रब नू मिलन दे सारे व्यों तरीके जुगतियां छड़। तो पुछया भगत जी करिए कि, कह लगे अपने आप नू सवारन दा यतन कर। आप सवारें मैं मिलें, मैं मिलिया सुख होए। जिस दिन तू अपने आप नू सवारेगा तेनू अंदरों ही तेरा खुदा नजर आएगा। अपने आप नू मैला रखेगा, परमात्मा दूर लगेगा, पवित्र कर लेगा, परमात्मा नेड़े लगेगा। अगर कोई कह रहा है परमात्मा बहुत दूर है तो खिमा चाहवांगा ही कल्ले कल्ले मनुख दे मुंह दे उत्ते गल कहनी कि तेरा हिरदा मैला है, ये गल काबले बर्दाश्त नहीं है। सांझे तौर दे उत्ते क्या जा सकदा है, मन मैला है, अति मैला है, रब दूर लगदा है। मिलदे ने प्रेमी कहिंदे ने परमात्मा दिसदा ते नहीं है, परमात्मा नेड़े लगदा ते नहीं है। इकल्ले नूं कहना कि मन मैला है थोड़ा मुश्किल है। सांझे तौर ते अर्ज करा मन बड़ा मैला है, बड़ा काला है। अगर मन दे अंदर थोड़ी भी कालख हटी है तो परमात्मा सब तो पहला तुहानू अंदर ही दिसेगा, क्योंकि मैल किथे है अंदर, परमात्मा किथे है अंदर। अंदरों मैल नूं हटाओगे परमात्मा अंदर दिसेगा, उस तो बाद विच बाहर संसार दे अंदर दिसेगा। मैं ते गुरु अर्जन देव साहब जी का एक बचन पढ़ के बड़ा हैरान होया। वो कहन लगे मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाय। गुरु अर्जन देव साहब जी कहन लगे निरंकार मिलिया है तू, पर मिलिया है मैनू बचपन दे अंदर मां दे रूप विच। जद बहुत छोटा सी अपनी मैं सार संभाल करनी नहीं सी जानदा, भोजन कमाउना भी मेरे वस विच नहीं सी, बनाउना भी मेरे वस विच नहीं सी, बहुत छोटा सी। मैनू तू ही मिलिया है मददगार बन के, पर मिलिया है मां दे रूप विच। मात उंगली पकड़ के रस्ते दे उते तुरन दी चाह सिखाई, मेरे बचपने दे शौक पूरे करन दा यतन कीता। मिलिया है तू, पर मिलिया है पिता दे रूप विच। मात पिता, परमात्मा नू पिता कह लेना गल समझ विच आउंदी, परमात्मा नू पति कह लेना गल समझ विच आउंदी। पर गुरु अर्जन देव कह रहे ने तू पुत्र भी मेरा तो ही है। जद मैं बहुत बिरध होया, मैं बहुत बुढ़ा होया, बुढ़ापे दे अंदर मेरा सहारा बनिया तू पुत्र दे रूप विच, सहारा बनिया पोतरे दे रूप विच, पर ए निरंकार तू बनिया है। मात पिता सुत, सुत दा मतलब है पुत्र, संस्कृत भाषा दा लफज है वैसे सुत, पर सुत दा आखरी अर्थ हुंदा है पुत्र। कहन लगे मात पिता सुत बंधप, अगर कोई रिश्तेदार मदद कर रहा है तो सतगुरु कहन लगे मैं रिश्तेदार नूं दाद बाद विच दियांगा, पहला दाद मैं तैनू दियांगा, क्योंकि बहाना बनाउण वाला तूं है, रिश्तेदार दे जरिए मदद करन वाला तूं है, भाई भाई दे रूप विच मिलिया है तूं मिलिया है। नानक होवा पार ब्रह्म सहाय, सहाय दा मतलब मददगार, तू ही मैनू मिलिया। तो हुण ओ परमात्मा सब तो पहला दिसदा है अपने अंदर मन विच, बाद विच गल आउंदी है संसार दी, संसार विच बाद विच दिसदा है। जिसनू अपने विच नहीं दिसिया, खिमा चाहवांगा उहनू परिवार विच भी नहीं दिसिया। जो पत्नी दे नाल कलेश पैदा करके रखदा है उहनू पत्नी दे अंदर परमात्मा नहीं दिसिया, तां ही है ना। जो पत्नी पति दे नाल कलेश पैदा करके रखदी है उहनू पति दे अंदर परमात्मा नहीं दिसिया, तां ही है ना। जो नौजवान मां बाप नूं बुढ़े मां बाप नूं घरों बाहर कढ देंदे ने, मां बाप दे अंदर रब नहीं दिसिया, तां ही है ना। ते जो मां बाप बच्चियां दे नाल दगा कमाउंदे ने, धोखा करदे ने, उस मां बाप नूं बच्चे दे अंदर रब नहीं दिसिया, तां ही है ना। ना सारे बच्चे माड़े ने, ना सारे मां बाप ही माड़े ने। कुछ बच्चियां दा दोष है, कुछ बजुर्गां दा दोष है। और दुनिया दे अंदर विचर के मैं वेख्या है, कुछ बजुर्गां दा दोष है, कुछ बच्चियां दा दोष है। तो खैर जिसनू अपने विच नजर नहीं आया उन्हूं अपने परिवार विच भी नहीं दिसिया, ते जिन्हूं परिवार विच नहीं दिसिया वह लख वार घर बार छड़ के किधरे बाहर गुफावां विच चला जाए, पहाड़ां विच चला जाए, जी मैं बंदगी करनी है, मैं रब दा नां लैना है, उत्थों भी नहीं दिसेगा। शुरुआत अपने तो

ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਆਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਬਾਰ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ। ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਤੋ ਖੈਰ, ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साढ़े शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, एक गर्दो गुबार मिट्टी कटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साढ़े इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे परिय हाथ पैर तन देहे पानी तोते उतरस के है। ये बाहर दी मैल है, अगर हाथ पैर भर जाते ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। परिय हाथ पैर तन देहे पानी तोते पानी दे नाल तो लो उतरस के है, लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ हुए देसा गोन लई है उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कहन लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाणगे साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए, मैल अंदर चली जाए ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिय मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफ़ज़ जिहड़ा आया ना उह पाप आया, अपराध नहीं आया इस जगह दे उत्ते। इस तरह नहीं है कि अपराध लफ़ज़ आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिय मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपण वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवें गुणा दोवें दोष दोवें तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असीं शुरू कर दिंदे आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ घड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसी की निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानदा। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानदा तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है, पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है जां सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने उह साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल तो इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रे, पत्नी दे सामने हो रे, धी दे सामने हो रे, समाज दे सामने हो रे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रे। गिरकत अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर विच जाना पिया है, उत्थे कोई सोग समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। ये जानदा है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर इह मेरा विशा नहीं सी। अंदर जो बुराई है उहदा नां पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जांदी है उहदा नां अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसीं बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह की फसल का बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने, दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने, मुढ़ तो उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहनियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहनियां कटदे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीआं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवी जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रह गई ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरीए मत पापा कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरीए मत पापा कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सरफ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कै रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तों बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नामे कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण ने सोच करे दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारो सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारो तो बिलकुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा? ठीक है लोकां दे सामने इन्नी कु तेरी इमेज बन जाएगी बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, यह मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे ही आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एह अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे वी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने वी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, वी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाई है, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी सच पाई है, जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असी की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाई है। असी एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाई है। एक जगह ते मैनू गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल, गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होवे, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना, मैं ते सिर ते बद्दी पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जांदा है, इहदा ध्यान किसे नू है, तन मैला ना होवे इहदा ध्यान सानू सारिआं नू है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल, जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रचना दे बचन ने। हुण इन्हां बचना नू सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही इह खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे हुए मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावे ते नौंदा फिरे अठाठ तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना, लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना, क्यों नहीं पैना, कहन लगे नाही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ
रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल दे उत्ते लिखिया होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उत्ते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स की बीमारी का इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने बा हुक्म रोक दिता कि बस संग एक ही शरीर का चाहिए, बहुतिया शरीर का नहीं चाहिए, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बारी हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या कहो सवेर दा कीता काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा चाहवांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सां। तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है। मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नाल। मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसी दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल भरे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिक्कड़ दे नाल भरे होन, या उहदा तन चिक्कड़ दे नाल भरिया होवे, कि आप उहनूं कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो? अगला चिक्कड़ दे विचों निकल के आया होवे तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उहनूं आप मिलदे हो? मिलना चाहुंदे हो पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उहनूं आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने हां उस तों पहला नहीं। जे तन मैला है ते असीं अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे। ऐलानिया कह देना चाहुंना, जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना है तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असीं कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे? सतगुरु दी गलवकड़ी दा निग किवें पा सकेगा जिहदा मन ही मैला है? चलो मैं होर एक बेनती उदाहरण वजों करदा चलां। दुनिया दे अंदर मां वास्ते सब तो अमोलक दात, अमोलक चीज मां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाला बच्चा है। बच्चा बालपन दी उम्र दे अंदर अपनी अनजानता दे कारण अपने ही मल मूत्र दे नाल अपने तन दे कपड़े नूं भर लवे, ते मां दीआं अखां वेख लैन कि बच्चे दे तन दे कपड़े लबरेज हो गए ने, भर गए ने बच्चे दे मैले दे नाल। तो हुण मां लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं इकदम चुक के अपनी छाती दा निक नहीं देंदी। पहला मां की काम करदी है? बच्चे नूं चुकदी है, उहनूं इशनान पान करवाउंदी है, तन दे कपड़े ला देंदी है, बदल देंदी है, दूजे कपड़े पवा के उहनूं साफ करके, ते तां मां अपनी छाती दा निक देंदी है, उस तों पहलां नहीं। हुण मन भी इस तरह ही, अगर मन भी लिबड़िया तिबड़िया है, मन मैला कुचैला है, ते गुरु दी छाती दा निक किवें पाओगे? मन पवित्र करोगे ते गुरु चरणा दे अंदर बहन दी जगह मिलेगी, वरना नहीं। तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव पातशाह दा एक बचन आंदा है, कहन लगे दाग दोष लगे हुए कपड़िया दे उत्ते दाग, ते मन दे उत्ते दाग का दे लगदे ने मैलियां कर्मां दे, मन दे उत्ते दाग का दे लगदे ने मैलियां सोचां दे। हजूर गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने दाग दोष मुंह चलिया लाए
तेरे मुंह दे उत्ते बड़े दाग लगे ने, दोष ने, अपराध ने, पाप ने, तेरा मुंह कालख दे नाल भरिया है, कलंकित है। कह लगे दरगाह बैसन नाही जाए, जाए दा अर्थ है जगह। कह लगे सच दे घर दे अंदर बहन वास्ते तेनू जगह नहीं मिलेगी। दरगाह बैसन, बैसन मैंने बहना, नाही जाए जगह नहीं मिलेगी। उथे आना है ते पूरा पवित्र होके आ, अधूरा पन नहीं चाहिदा। जितना समा मनुखी मन दे अंदर पूरी पवित्रता नहीं आ जाती, उतना समा खुदा दे अंदर लीन नहीं हो सकता। दूर ही रहिंदा, इहनूं वार वार चांस मिलता रहेगा, जन्म मिलता रहेगा। ए जितना समा अपने आप नूं पवित्र नहीं कर ले, उन्ना समा परमात्मा दे चरणा विच बहन दा समा नहीं मिलेगा। एक बेनती मैं इस संबंध अंदर होर भी करदा चलां। साडे तन दे उत्ते जिहड़े पाए हुए कपड़े ने, वह कपड़े मैले हो जाण। शरीर विचों निकलन वाली मैल या बाहरी गर्दो गुबार दे कारण तन दे कपड़े मैले होए। वह कपड़े असी ला के पत्नी दे अगे सुट देने, धो के साफ करके मैनूं दे। अगर पत्नी नहीं है, मां दे अगे, भैण दे अगे, धी दे अगे या किसी दूसरे दे अगे कपड़े रख देने, कपड़े मेरे ने, धोण दा काम तू कर। बाहरी दुनिया दे अंदर ये दस्तूर चलदा है, कपड़े किसे दे ने, उन्हां नूं साफ कोई दूसरा कर रहा है, धो कोई दूसरा रहा है। धर्म की दुनिया के अंदर मन के कपड़े नूं धोण वास्ते यह दस्तूर भी नहीं है। यह मन का कपड़ा मैला किया है, तुसीं आप इनू धोना भी पैना है, तुहानू अपने आप में। यह मन का कपड़ा इस तरह का नहीं है कि इनू लाओ तो ला के किसी लौंडरी ते लै जाओ कि उत्थों मन धोवा के वापस लै आइए। कोई लौंडरी इस तरह की नहीं है। मन का कपड़ा इस तरह भी नहीं है कि इनू लाओ तो ला के मां भैन धी दे अगे रख दो कि कपड़े तू साफ कर। मन तुहाडा है, मैला तुसी कीता है, धोना भी तुहानू आप ही पएगा। हाँ एक गल जरूर है, तुसी अपने मन नू धोण वास्ते यतन करो थोड़ा, तो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे ते रहमत करनगे बहुत ज्यादा। पर जे हिम्मत करोगे मन नू साफ करन दी, तां ते जे हिम्मत ही ना करो ते फिर गुरु की रहमत तो भी वांझे रह जावांगे। आप ही इनू धोना पैना है, आप ही असी इनू मैला किया है। कुछ नुकते ने जो मैं तुहाडे चरणा विच बयान करन दा यतन कर रहा, इन्हां नू हिरदे दे अंदर वसाउण दा जरूर यतन करियो। जदों कोई अपने घर दा कूड़ा करकट इकट्ठा करके, झाड़ू पोचा करके, घर दे अंदरों कागज मिट्टी कट्टा इकट्ठा करके लफाफे विच पा के उह तुहाडे घर दे दरवाजे दे अगे रख जाण, तो तुसी बर्दाश्त कर लोगे? दूसरे दे घर दा कूड़ा करकट पाया है उन्हें बैग दे अंदर, वो बैग सुट के चला गया एन तुहाडे दरवाजे दे अगे जिथों तुसी अंदर आना है या बाहर निकलना है, बिल्कुल मेन डोर दे सामने रख के बर्दाश्त नहीं होएगा। गरीब तो गरीब भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मन की सफाई करनी है ते इस तरह का ध्यान रखना पेगा। दूसरा कोई मेरे मन दे घर दे अंदर कूड़ा करकट सुटन का यतन ते नहीं कर रहा, कोई दूसरा मेरे कन्ना दे अंदर चुगली सुटन का यतन कर रहा है, ते परहेज करो भी कूड़ा तेरा है, तू मेरे मन में सुटन का यतन क्यों कर रहा है। अगर कोई तुहाडे कन्ना विच निंदा दे बोल, काम दे बोल, बुराई दे परे बोल पा रहा है, ते गुरेज करो, परहेज करो, उनू कहो भई अपना कूड़ा करकट, अपनी बुराई अपने पास रख, तू अपने घर का कूड़ा मेरिया कन्ना दे राही मेरे मन दे घर विच सुटन दा यतन क्यों कर रहा है। कूड़ा दूजे दा हुंदा है, सानू मन दी समझ नहीं, असी दूसरे का कूड़ा चोली फैला के प्रवान करी जाने। जे कोई दूसरा चुगली करता है दूजे की, असी हां विच हां मिलाने, कोई निंदा करता है हां विच हां मिलाने, ते बड़ा खुश होके दूजे की निंदा ते चुगली दे अंदर हिस्सा लेने, बड़ा खुश होके निम्मा निम्मा हसदे हुए भी नजर पैने दूसरे की चुगली सुन के, दूसरे की निंदा सुन के। पर यह नहीं जानते कि जो सुन रहे हो, जो सुना रहे हो, इन्हें ही तुहाडे जीवन की रुकावट बन जाना है।
इन्हें जीवन के अंदर दीवार का काम करना, इन्हें तुहानूं पार लगन नहीं देना। प्यारे हो, इन्हां नुक्तियां नूं अपने जीवन के अंदर अपनाओ अगर जीवन नूं रोशन करना चाहुंदे हो। गुरबाणी का फरमान है, मन मैले सब किछ मैला, तन तोते मन हच्छा ना होए। कह लगे तेरा मन मैला है ते एवें समझ लै कि सारा कुछ ही मैला है, तन नूं धोण दे नाल तेरा मन हच्छा नहीं होना। कबीर साहब बैठे सन खड्डी दे उत्ते, कपड़े बुन रहे सन। कपड़े बुनना कबीर साहब जी दी करेते, कबीर साहब जी दा कम है, धंधा है। कपड़े बुन रहे ने खड्डे दे उत्ते बह के। निकलिया एक बिलकुल सोच दे नाल जुड़िया होया, बाहरी सोच दे नाल पखंड दे नाल जुड़िया होया कोलों ब्राह्मण। ब्राह्मण ने वेख्या कि कबीर साहब खड्डी बुन रहे ने और खड्डी दे नेड़े बह के उन्होंने लंगर छकना शुरू कर दिता। अचानक उसे समय किधरे चलते चलते माता लोई जी आ गए प्रशादा लेके घरों, ते कबीर साहब उत्थे ही हाथ धो के खड्डी दे कोल ही बह के प्रशादा छकना शुरू कर देंदे। उस पखंडी ब्राह्मण ने तनज परे दो बोल गए कबीर साहब जी नूं मुखातब हो गए, क्योंकि सारा बनारस तकरीबन तकरीबन पखंडी ब्राह्मणा दे नाल भरिया सी। अगर बनारस दे अंदर संती होंदे ते गुरबाणी दे अंदर ये बोल कदी ना आउंदे कि गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग, कोई हर के संत ना आखिया बनारस के ठग। बनारस दे ठग मशहूर ने, बनारस दे संत मशहूर नहीं है, ठग मशहूर ने। निकले कोलों तनज परे बोलां दे अंदर गल कह दिती। कहन लगा जिस बंदे नूं भोजन छकन दा नहीं पता कि किथे बह के खाना है, उहदा जीवन किन्ना को सुच्चा होएगा, उहदा जीवन किन्ना को पवित्र होएगा। कबीर साहब जी आखर बोल पै, कहन लगे माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आमह झूठे जाहे भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कह लगे मां झूठी पिता झूठा, उन्हां दी औलाद उन्हां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाली ओह भी झूठी। आ रहे ने झूठ दे नाल परे, जा रहे ने झूठ दे नाल परे, आउण जाण दा इह सिलसिला मुक्या ही नहीं। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, ठाओ मैंने जगह। पंडित जी दस दे ते जाओ कि सुची जगह केड़ी। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ, जिथे बह के मैं भोजन खावा, ए दसता ते जा के ओ जगह केड़ी है। मन नू पवित्र करन दे नाल निरंकार दी हजूरी दे अंदर प्रवेश की मिल जांदी है। तन नू पवित्र रखो जरूर, पर सारा जोर तन दे उत्ते ना दियो, सारा जोर मन दे उत्ते दियो। मन दी सफाई वल ध्यान दियो, ताकि मन करके हजूर दी हजूरी दे अंदर प्रवान हो जाइए। पंडित निहाल सिंह जी बहुत आला कविता नूं जन्म देंदे ने। उन्होंने मैल दे संबंध विच एक बोल लिखिया है। वो कहिंदे ने एक मनुख व्याया गया, उहदे घरवाली दा नां सी चंद्रमुखी। पुराने समय दे अंदर शरीर दे लक्षणां नूं वेख के, सुहप्पन नूं वेख के, नक्शो निगार नूं वेख के नाम दे दिया करदे सन चंद्रमुखी। नाम सी चंद्रमुखी, ते पति चंद्रमुखी दी शोभा करदा, थकदा नहीं सी। चंद्रमुखी दे चेहरे नूं वेख वेख के आनंद पाउंदा सी, ते इह गल कहिंदा सी, चंद्रमुखी मैनूं लगदा है तेरे वर्गा सुंदर मनुख दुनिया दे अंदर दूसरा नहीं है। पंडित निहाल सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन चंद्रमुखी दे नक विचों मैल निकले। उन्हें हाथ दे नाल नक दी मैल नूं साफ कीता, पर थोड़ी जी मैल उहदे चेहरे दे उत्ते, उहदी गल दे उत्ते लग गई, थोड़ी जी मैल। उहदे पति ने गलानी कीती, नफरत कीती उस मैल नूं वेख के। ते मैरज करदा रहिंदा अक्सर ही कि नफरत हुंदी मैल तो है। जे दूजे दी मैल दिस रही है दूजे तो नफरत है, जे अपनी मैल नजर आ जाए ते अपने तो भी नफरत है। दूजे तो नफरत करदे हो, जे कोई तुहानूं पुछे भी क्यों,

तन सुहागन नाओ सहरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह सहरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निकी गोता आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संग

जामा मर्द है, उपदेश ही कली औरत नू है, मर्द नू उपदेश नहीं, उपदेश सांझा है। गल परमात्मा दी चल रही है, इस करके भगत फरीद साहब परमात्मा नू कंत कहिंदे ने, अपने आप नू नार कहिंदे ने। वैसे भी तुहाडे ज्ञात लई मैं बेनती करदा चला, गुरबाणी नू ध्यान दे के पढ़ो। गुरबाणी दे अंदर किधरे परमात्मा नू मां, किधरे पिता, किधरे पुत्र, किधरे भाई, किधरे बंधु कह के बुलाया गया, सत्कारिया गया। किधरे किधरे गुरबाणी दे अंदर परमात्मा नू मालक ते स्वामी कहा गया, गोपाल कहा गया। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे संबंध विच कबीर साहब इस तरह भी कहिंदे ने, कहे कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। परमात्मा मैं तेरे दर दा गोला गुलाम हां और तेरी गिरफ्त विच हां, हुण मर्जी तेरी है, तू मैनू जिंदा रखे ता भला है, तू मैनू मार देवे मेरा तावी कोई इतराज नहीं। उथे अपने आप नू गोला ते परमात्मा नू मालक मन रहे ने। सूफी संतां ने तकरीबन तकरीबन परमात्मा नू महबूब जानिया है और अपने आप नू महबूबा दी जगह दे उत्ते मन्निया है। तकरीबन सूफी संतां दा किरदार इस तरह दा है, परमात्मा नू महबूब मनदे ने, अपने आप नू महबूबा मनदे ने। तो जद परमात्मा महबूब है तो फिर लफज भी उस तरह दे वरतों विच लियाउणे पैणगे। भगत फरीद साहब जी ने लफज बयान किते, अज न सुती कंत स्यों। कंत मैंने परमात्मा, कंत दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा है पति, ते साडा पति कौन है, परमात्मा। अज मैं पति परमात्मा दा मलाप नहीं जानिया, पति परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। जीव स्त्री परमात्मा दे संबंध विच कह रही है, अज मैं परमात्मा दी नेड़ता नू मन करके नहीं पा सके। ते परमात्मा दे नेड़े तन ते हुंदा नहीं, हुंदा ते मन। परमात्मा दे मलाप दा आनंद मन नू मिलना है, मन ही परमात्मा पति दी शेज दे उत्ते जाएगा। तन दा जाना ही बड़ा मुश्किल, तन किवें लेके जाओगे, तन ने ते मर भी जाना है, मुक भी जाना है, तन बिरध भी हो जांदा है, तन सड़ भी जांदा है, तन पसम भी हो जांदा, जाना मन ने है परमात्मा दे दर दे उत्ते। अज मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ पाया, जोड़दा समय रोज रोज सुबह तो शाम तक परमात्मा दे नाल, अल्लाह दे नाल अपने मन नू। अज किसे कारण दे करके मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया, मैं परमात्मा दे नाल सौ नहीं सकिया। सौन दा मतलब है मिलना। अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरे सारे शरीर दे अंदर बेचैनी है, मन दे अंदर बेचैनी है। ते बेचैनी किथे बनदी है, मन दे अंदर। मिलाप दा रस किथे बनदा है, मन दे अंदर। मिलन वाला कौन है, मन। अज मेरे मन दे अंदर बेचैनी है, बेचैनी किस गल दी है, क्योंकि जो परमात्मा रोज रोज मिलदा सी, उनू मिलन करके कोई ना कोई नवा रस जीवन दे अंदर रोज बनदा सी, नवा रस रोज पैदा हुंदा सी। अज परमात्मा दा मिलाप भी नहीं हो सकिया, किसे कारण मैं परमात्मा नू आराध नहीं सकिया। अज वो रस भी नहीं बनिया, ते रस नहीं बनिया ते मन दे अंदर चिड़चिड़ापन ते क्रोध दा जन्म होया। तुहाडे विचों जिहड़े कुछ प्रेमी रोज अमृत वेले जागण वाले ने, नित नेम करन वाले ने, या कुछ सज्जन अभ्यासी ने, उन्हां नू मेरी बेनती दी पकड़ ज्यादा आएगी। किसे मजबूरी दे कारण किसे दिन अमृत वेले ना जाग सकन, या किसे मजबूरी दे कारण, कम कार दे कारण, या शरीर ठीक ना होवे इस कारण वो नितनेम ना कर सकन, या कोई थोड़ा समा बह के परमात्मा दे नाल सुरत नू ना जोड़ सकन, सारा दिन उन्हां दा इस तरह बीतदा है जिवें कोई बड़ी कीमती चीज जेब दे अंदरों निकल के ते गुम हो गई है। सारा दिन, सारा दिन उन्हां दा चिड़चिड़ेपन दे अंदर, क्रोध दे अंदर रहिंदा है, सारा दिन बेचैनी विच बीतदा है। क्यों? क्योंकि जो रस रोज रोज मिलदा सी वो रस अज नहीं मिलिया। रोज अमृत वेले जागदा सी, अज जागया नहीं गया। रोज नित नेम दीयां बाणियां दा जाप करदा सी, अज कीता नहीं गया। रोज सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न दा तहैया करदा सी, अज

जिन शिरयात ने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हार तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारावारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

कर्ता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेर उपावो डूबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाय माया मोह भरम भय भूले सुत दाराशों प्रीत लगाई एक उत्तम पंत सुनहौ गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई।

आई। परम सम्मान योग शब्द गुरु परमेश्वर जी दा किरदा स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने हफ्तावारी जो विशेष दीवान सजदे ने अमृत वेले तो हजूर दी कृपा ले रहे हो, जो इस गुरु घर दी निता प्रति दी ए मर्यादा बन चुकी है। अमृत वेले सिमरन गुरुदेव जी दे बख्शे हुए नितनेम, उस तो उपरांत इलाही गुरबाणी दा कीर्तन संपूर्ण आशा दीवार आप जी ने अज सरवण कीती, उस तो उपरांत इलाही बाणी दा कीर्तन होया। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर कर देन और आप साध संगत आशीष बख्शो, जो पिछले दो हफ्तियां तो आपां ने भाई साहिब भाई गुरदास होरां दी वार नूं आधार बनाया सी कि गुरु के सिख दे लक्षण की ने, गुरसिक्खी दी निशानी की है, ते पिछे आपां विचार चुके हैं भाई साहिब दे कुछ बचन कि धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चलै निवाण नूं, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, बहु रंगी एक रंग है, सबना अंदर इको जानी, तत्ता होवै धुप विच छावै ठंडा विरती हानी, तपदा पर उपकार नूं ठंडे पर उपकार विहानी, अगन विहाए अगन बुझाए तपत विच ठंडा होवै बिलम न आनी, गुरसिखी दी एहो निशानी। भाई साहब दे बचन आपां इतों तक वाचे सन, सिख विच निम्रता पानी दी तरह, सिख निवान नूं जांदा जिवें पानी नीवें पासे नूं तुरदा। ते असी तीसरा लक्षण विचारिया सी कि गुरु का सिख जिहड़ा वो अपने अंदरों ते बाहरों निर्मल है, जिवें पानी निर्मल है इसे तरह सिख भी जिहड़ा वो निर्मल है। अगे जिहड़े आपां अज कुछ पॉइंट वाचने ने जां विषय, पानी शीतल है ते गुरु का सिख भी शीतल है। पानी जिहड़ा वो हर एक नूं शुद्ध कर दिंदा है, वो सब दी मैल धो दिंदा है। ते गुरु के सिख विच भी मेरे गुरु नानक ने इन्नी कु कृपा कर दिती, ए भी मैले मना नूं जे किते गुरु का सिख होवे पूरन उहदे कोल बह जाण ते मैलियां नूं निर्मल कर दिंदा है। जिवें पानी हर एक नूं अपने वल्लों सुख दिंदा है, हर एक रंग विच रज जांदा है, बनस्पति दे हर रुख दे अंदर पानी है,

शब्द आठ पहर गुण गावा तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी कवन बदाई कह सको दे अंत गुनिता कर कृपा मोहे नाम देखो नानक दर सरिता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरिता परम सम्मान योग युग युग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दा प्रकाश दिवस आप जी मना रहे हो अमृत गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने बड़ी भावना श्रद्धा नाल गुरमुखां तो सरवण कीता है। आओ आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दी टेक लैके बैठे हो सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास और गुरबाणी दा जो सिद्धांत है इस दी विचार आप संगत दे समक्ष अर्ज करनी है। एकाग्रता दी दात बख्शो धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप ही सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के भावना नाल अपने पवित्र बचना दी विचार आप ही करा लवो करो कृपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों भाई साहिब जी खुरां ने कीर्तन की समाप्ति से जो अमृत बचना का कीर्तन सरवण कराया है धन गुरु अमरदास महाराज हजूर के मुख तो उचारण की हुई अमृत बाणी रामकली राग अंदर आनंद साहब की एक पौड़ी का कीर्तन आपने सरवण किया है। ते अक्सर ये पाठ आप जी अमृत वेले सरवण भी करते हो पर धन गुरु अमरदास जी ने कृपा करके इस पौड़ी विच तीन बचन कहे। पहला बचन ते किता ने के आओ इकट्ठे हो के अपने सतगुरु जी दी पवित्र गुरबाणी नू गायन करिए शब्द वरते है सच्ची बाणी नू ते नाल कृपा कीती भी जदों कोई सच्ची बाणी नू गाएगा अपनी रचना दे नाल इस तो तुल इस तो उच्ची होर कोई बाणी नहीं
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸਰਵ

उपावह डोबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै भीतर वगै काती परणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी रात्रि वेले दे दीवान दी हाजरी भर रहे हो। सतगुरु जी ने जो गुरु सिख ले नेम बनाया है उस बनाई हुई मर्यादा दे अनुसार आप जी ने सोदर रहराज साहब जी दा पाठ गुरु सवारिया तो श्रवण किया है। हजूर के चरणा विच अरदास हुई वितर हुकम साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी खुरां दा उच्चारण किया होया आप जी ने श्रवण किया है। तू काहे दुर्लह प्राणिया तुद राख हैगा सृजना।